0: बड़े मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ।
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो, और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, और इसी लीला पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बड़ा नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। और यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे, माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं है। ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया।

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा है।

इस संसार का रचयिता ईश्वर है। उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो कुछ हुआ है या हो रहा है और आगे होगा, वो सब ईश्वर की ही रचना है और केवल वही इसका ज्ञाता भी है।

मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है।

कि जिंदगी आजमाती है, हंस के रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए। दिल और धड़कन मिले तो, पर अफसोस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए।

प्रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

की रो रहा हूं मैं। या मोय है अंकित तिवारी, अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म आशिकी टू की सुन रहा है तू, सुन रहा है ना तू कि रो रहा हूं मैं। सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जुबिन नौतियाल की आवाज में अब गीत पेश है, सुनिए।

एंड तुझे कितना चाहे और हम, जुबिन नौटियाल की आवाज, फिल्म कबीर सिंह का गीत, और उजाला रेडियो, और हम और आप।

Nash King and Shasha तिरुपति से हाँ गीत को आप सुने फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड अनु अरिजीत सिंह

सोनू निगम और अलका याग्निक, इन दोनों से आप गीत को सुने। फिल्म का नाम रेफ्यूजी। उजाला रेडियो पर इसी फिल्म से इन्हीं दोनों की आवाजों में एक और गीत पेश है।

मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे पास आ। अलका याग्निक एंड सोनू निगम, इन दोनों से गीत को आप सुने।

0: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं जो कि उजाला का सोना चिड़िया है। और उजाला के सोना चिड़िया एक 20 साल गाना हैगा। दिट वर्ड एट द जोमर हिट फ्रॉम 2026। या सिर्फ उजाला के जरिए आप सुनने को जा रहे हैं। नतीलुक खाय दत ओवरऑल नहीं हो रहा, मार उजाला ई गनवा आज हलचल मचा दी है ई गनवा के साथ। तो सुनिए गाना अति सुनमर जीने जो हर एक को पसंद आएगा।

काटा लगा उजाला के साथ। हाय सर, हो रहा है सर सच धज के इन सोमर क्लीनिंग नया वकांसी पे गला दमिया हमें वो फोटो बैठा रहा असौ फ अन फिल्म आनंद माक बस एंड दे में देंक आन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इन सोन हूं नी सोन बस जो नहीं डबल डेकर तो देखिए जवान कूद के बैठा है या ऑफ ठड़ा है देख में देंक आन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे

मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, चंगेज़ खान फिल्म से गीत को आप सुने, और ये उजाला रेडियो है।

0: and roll. You are. तू जाने तो, तो,
1: अब यहां से शुरू है उजाला रेडियो पर एक ऐसा प्रोग्राम जिसके सुनने के बाद आपका दिन और सुनहरी हो जाएंगे और साथ में आप भी और खुश हो जाएंगे।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

उजाला सोना चिरैया उजाला रेडियो DAB प्लस और इंटरनेट के जरिए हमेशा आपके साथ।

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं जो कि उजाला का सोना चिड़िया है। और उजाला के सोना चिड़िया एक 20 साल गाना है। दिट वर्ड एट द जोमर हिट फ्रॉम 2026। या सिर्फ उजाला के जरिए आप सुनने को जा रहे हैं। नतीजलक ga je dat overal niet horen, maar Ujala, Iganwa, aaj halchal machati hai, Iganwa ke saath. To suniye gana, it is a number, jo har ek ko pasand aayega.

I love this song. सजना है मुझे सजना के लिए. वाह. या दिल खेफ ये तो लीव है. लीव है, लीव है, लीव है या. और हम इंतजार कर रहे हैं उस शख्स का जो हमें आलतैत इंतजार करवा रहे हैं. अगला है लात में आलतैत वक्त नहीं है. दुश या खुद हाँ इस तोरी मान ओक दुश या दन मग ही दैट वेल ज़ाइन हो. दुश एक वक्त वेल ऑफ हम एन दिस डाग हमें कोनो ई गनवा पठाइस. और तुन दाखते फन आई वर्कलिक अस एक्स मॉर्गेस वक्कर वर्ड. Ik neem een kopje koffie of een kopje chai en ik doe de deur open of de gordijnen open en ik kijk naar buiten, naar de tuin. Dan draai je deze pokoe op de achtergrond. Ja, is toch geweldig. The Magic Morning.

कांटा लगा उजाला के साथ। हाय सर, हो रहा है सर सच धज के इन सोमन क्लीनिंग नया वैकेंसी पे गया है दमिया। हमें एक बार फोटो बैठा रहा असौफ है अन फिल्म आनंद माँ के पास एंड दे में देख आन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इन सोन हूँ नमी सोन बस जो नहीं डबल देकर तो देखिए जवान कूद के बैठा है या ऑफ ठड़ा है देख में देख आन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

6:10 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। बुधवार है आज, इस महीने जून जो नए है, पहला बुधवार है 3 जून साल 2026। तो फिर एक बार आपका सेवा करने चले आए हैं लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और वो भी रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। तो मेरे प्यारे सुनोलो, तहे दिल से स्वागत हम करते हैं लाइफ एंड आर यू आर के स्टूडियो रतनाम से, जो फिर एक बार ये प्रोग्राम सेवा में हम पेश कर रहे हैं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। बाहर फिर बारिश होने लगा है, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप घर में हैं या काम पर हैं या मोटर कार में शायद बैठे होंगे, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है स्वागत है, स्वागत है। आज फिर एक बार आप सभी को ले चलेंगे पुराने यादें कुछ और मिलकर, कुछ जो संगीत के साथ पुराने यादें जोड़े हुए हैं मिलकर हम फिर एक बार हम और आप ताजा करेंगे। आज प्रोग्राम फिर हम बजाएंगे सजाएंगे मशहूर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद जी के मूवी से, जो हमने नगमाएं फिर एक बार निकाल निकाल कर इनकी मूवी से आज का प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत सजा रखा है, और ये खूबसूरत प्लेलिस्ट से हम नगमाएं निकाल निकाल कर आप तक पेश करेंगे। और वो झूलना वाली बात मेरी वही होंगी, कभी हम ऊपर चढ़ेंगे तो कभी वापस नीचे, और धीरे धीरे धीरे हम बढ़ चलेंगे द 60s और द 50s की ओर। फिलहाल तो इस घंटे में हम प्रोग्राम सॉन्ग्स खास करके फ्रॉम द 70s से आपका सेवा हम करेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको ये भी मालूम रहे कि आज का मेरे ये प्रोग्राम के दौरान हर एक घंटे पर इश्तिहारे आप सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, सड़क का हालात, मौसम क्या क्या हाल होंगे, और 7 बजे के इश्तिहारों के बाद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मुझे कि प्रोग्राम में उजाला रेडियो के जरिए भी मृत्यु समाचार यानी कि मौत की खबरें भी थोड़ा सा जो है पुकारा जाएगा। बरिख्त फनूफलैद स्ट्रक्स उमसीव यूर नाद कमर्शियल ब्रेक यूरोप यू आर मेरे प्यारे सुनो लो, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आपके हर एक कामकाज के लिए आप अवश्य तार करें दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर 020-409-0807 और वो भी सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक। और आपको ये भी मालूम रहे कि लगातार मेल के जरिए भी आप अपना कामकाज दिलवा सकते हैं, और आप मेल करें किसी भी पल किसी भी वक्त किसी भी दिन info@ujala.nl पर। और मेरे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्रिय सुनने वालों, आप अवश्य स्टूडियो में भी व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं मुझसे, और आपको ऐप करना है 020-363-0000 सीधे यहाँ स्टूडियो के अंदर में आपका ऐप आएगा और जवाब भी आपको मिलेंगे, ये हम वादा करते हैं। ले चलते आपको आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर। फिल्म का नाम है इश्क इश्क इश्क, लाजवाब बेमिसाल टाइटल है ना, इश्क इश्क इश्क। और मूवी जो है 1974 का है, नीहतिन फीरन सीफ तक। एक गीत जो बहुत सूट करेगा आज का ओपनिंग, आनंद बख्शी जी ने लिखा, किशोर कुमार की आवाज और संगीतकार राहुल बर्मन यानी कि आर डी बर्मन।

0: आपका दिल।
1: हसीनों की पुजारी किशोर कुमार की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन, मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं, महफिल में आपके शामिल होकर मैं आपका दिल बहलाऊं, और आपका दिल बहलाएंगे भरपूर मेरे प्यारे सुनने वालों रात्रि में 9 बजे तक, लेकर बहुत ही खूबसूरत गाने नगमाएं जो हमने चुन चुन कर निकाले हैं देवानंद जी के मूवी से। आज का ओपनिंग

Rahul de Barman. Ishq Ishq Ishq फिल्म का नाम uit 1974 1974 फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी और साथ दिए हैं मूवी में सिनेटमान प्रेमनाथ इफ्तखार शबाना आजमी कबीर बेदी सरीना वहब जीवन जी ए के हंगल कोमिला विड़क बिरबल नदीरा सुधीर ब्यूटीफुल फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सिने वालों उजाला रेडियो है ये एक या घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 9 मिनट बाकी हैं सरे 6 बजने में बैक टू द फ्यूचर पेश कर रहा हूं लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से मैं हूं आपका यारों का यार रतन रामदुलारे पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी को आज इस पहला जो पहली बुधवार है नई महीना जून का आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर से वैसे तो एक छलान हम लगाना चाहते थे लेकिन चलो करते हैं छलान लगाते हैं और आपको ले चलते हैं फिल्म के ओर जिसका नाम है कहाँ है मनपसंद हाँ जी मनपसंद फिल्म का नाम और ये फिल्म जो है 1980 का है नीहंतिन तख्त और ये फिल्म का एक नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों हम निकालेंगे वाह तो ik ben hem helemaal niet kwijt लाइव है मेरे प्यारे सुनने वालों बहुत सारे मॉनिटर्स यहाँ पर मुझे देखना है तो कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि कहाँ देखूँ कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालूँ मनपसंद मूवी 1980 का है निहतिन तख्त अमित खन्ना इनका लिखा हुआ गीत राजेश रोशन के साज और संगीत पर गाकर सुनाएंगे मोहम्मद रफी साहब जी और जहाँ तक मेरा ख्याल है तीना मुनीम जी भी साथ देंगे चलो सुनते हैं इस गीत को जिसका बोल है लोगों का दिल

0: लोगों का दिल अगर तुम्हें जीतना है तो मीठे मीठे बात बोलो। रफी साहब जी की आवाज और साथ दे रहे थे टीना मुनीम जी, अमित खन्ना, इनका लिखा हुआ ये गीत जो मिलकर गाए हैं राजेश रोशन के साज और संगीत पर। मनपसंद फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों 1980 निहतीन तख तख का ये एक फिल्म है मनपसंद। और आपको मालूम रहे देवानंद साहब जी टीना मुनीम और महमूद साहब जी गिरीश कर्नाड जी भी मूवी में है सिंपल कपाड़िया। अमित खन्ना जी इनका प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों और देवानंद साहब जी की हिट सॉन्ग्स आप तक पेश कर रहा हूं। वापस ले चलेंगे 7 साल 1973 निहत इंद्रियन सीवन तक एक मस्ती भरी छेड़छाड़ सॉन्ग सेवा में पेश करने जा रहा हूं। रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो निकाल रहा हूं फिल्म बनारसी बाबू। बनारसी बाबू 1973 का फिल्म निहत इंद्रियन सीवन तक। कल्याण जी अनान जी है संगीतकार और गीत मिलकर गाएंगे। आप यहां से जाने क्या क्या लोगे किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी।
1: आप यहां से जाने का क्या लोगे?
2: कौन? मैं?

या ब्यूटीफुल मस्ती भरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, आप यहां से जाने क्या क्या लोगे। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। कल्याण जी आनंद जी की साज और संगीत पर कमाल का म्यूजिक है। कल्याण जी आनंद जी का एक अलग सा इनका म्यूजिक है और इसका प्रोग्राम हम बना चुके हैं कई सालों पहले। लगता है 4-5 साल पहले हमने 2-3 प्रोग्राम बनाए थे। इनका फुल प्रोग्राम हम बनाएंगे नाद सुमर फकांसी। प्रोग्राम एकदम तैयार है मेरे प्यारे सुनवालो, एकदम से तैयार है। कल्याण जी आनंद जी की बेहतरीन बेहतरीन नगमाएं हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में सुमर फकांसी के बाद शायद 8 अगस्त सितंबर से हम उनके प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे। पता नहीं उससे पहले एक और धमाकेदार द 90s और मिलेनियम के बाद जो एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 80s के भी कुछ लाजवाब बेमिसाल उनके गाने हैं, उनका प्रोग्राम पहले आएंगे देवानंद साहब जी के बाद, और फिर उसके बाद कल्याण जी आनंद जी का सुपर टूपर एक्शन पैक प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। प्रख्तक म्यूजिक, रौंते सभी खड़े हो जाते हैं बहुत सारे इनके गाने सुनते वक्त सिर्फ म्यूजिक के बल पर। यह था फिल्म बनारसी बाबू का एक नगमा। बनारसी बाबू 1973 का फिल्म है। निखत इंद्रियन से मतलब शंकर मुखर्जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। देवानंद साहब जी का डबल रोल। राखी गुलजार फिल्म में भी है और योगी ताबाली जीवन साहब जी। प्यारे सुनो, आपको झुला रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे, और अब 73 से हम आपको 9 साल ऊपर ले चलेंगे। 1982 93 फिल्म का नाम है स्वामी दादा। ये मूवी से गीत निकालेंगे। ये गीत बड़े अनजान साहब जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार है राहुल बर्मन। वंस अगेन हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, अब की बार मेलोडी क्वीन लता जी के साथ गलियां गलियों खाक बहुत दिन हमने चनी। पेश करता हूं खूबसूरत गीत हियर ऑन यू आर फ्रॉम द मूवी स्वामी दादा।

0: या गलियों गलियों, खाक बहुत दिन हमने छानी, लता जी और किशोर कुमार की आवाज, अनजान साहब जी का लिखा हुआ गीत, संगीतकार आर डी बर्मन, राहुल बर्मन, स्वामी दादा फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनने वालों 1982 1983 का ये फिल्म है, जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, इन्होंने ये फिल्म में काम किया है मिथुन चक्रवर्ती के साथ, रति अग्निहोत्री, अमेरिकन से या एंग्लिश से एक्ट्रेस, नाम मैं तो भूल गया क्या नाम था, नाउ daar kom ik even zo snel niet op. लेकिन मूवी में रति अग्निहोत्री, शक्ति कपूर, पद्मिनी कोल्हापुर, जैकी श्रॉफ, इन सभी थे। मेरे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे हो रहे हैं 7:30, 6:30 बजने में 10 मिनट गुजर चुके हैं, या बजकर 10 मिनट गुजर चुके हैं, और जैसे मैंने कहा, हर एक घंटे पर आप सुनेंगे इश्तिहारे देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात, सड़क का हालात क्या है, और अभी 7 बजे अफसोस के साथ भी उजाला रेडियो के जरिए मृत्यु समाचार, मौत की खबरें भी थोड़ा से जो है पुकारा जाएगा, और तमाम सूचनाओं के बाद 7 बजे मौत की खबर के बाद हम सेवा में फिर हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, जो देवानंद साहब जी के खूबसूरत नगमाओं के साथ हमने आज जो प्लेलिस्ट सजा रखा है और निकाल निकाल कर आपका हम दिल बहला रहे हैं। एक गीत हमने पेश किया था, आप यहां से जाने क्या क्या लोगे। अब गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूं, गीत का बोल है, बोलो क्या हमको दोगे अगर मैंने ये दिल तुम्हें बिना मांगे दे दिया। बहुत खतरनाक चीज, बिना मांगे हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया, अब तू बोलो तुम मुझे क्या दोगे। तो सवाल जवाब का एक नगमा, काफी रोमांटिक, थोड़ा सा छेड़छाड़, विजय आनंद जी ने लिखा, देवानंद साहब जी के छोटे भाई, जो एक मशहूर डायरेक्टर भी, एक्टर भी है, और गाने भी मालूम पड़ता है, बेमिसाल लिखते हैं, तो इनका लिखा हुआ गीत किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे, एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम छुपा रुस्तम, और ये फिल्म 1973 का है, निहत इंद्रियन सेवंत। दिस इज यू आर बैक टू द फ्यूचर, मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइव फन आउट स्टूडियो रोटरडम।
1: बोलो क्या हमको दोगे,
2: बोलो

0: पूछो
1: बोलो
0: ओ पूछो
1: बोलो
0: ओ पूछो ना
1: बोलो ना
0: अरे तो पूछो ना
1: बोलो बोलो बोलो बोलो
0: पूछो पूछो पूछो पूछो पूछो पूछो
2: बुल्लो क्या हमको दोगे दिल जो तुम्हें दे दिया बिना मांगे। मस्ती भरी रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, खूबसूरत गीत जो विजयानंद जी ने लिखा और जिसका संगीतकार सचिन देव बर्मन एस दे बर्मन, और जो पिक्चराइज किया गया है देवानंद साहब जी और हेमा मालिनी पर। फिल्म का नाम छुपा रुस्तम। मेरे प्यारे सुनने वालों, छुपा रुस्तम 1973 निहतिन द्रियन सेवन तक का एक फिल्म। और कमाल की बात आप देखो ना कि प्रोड्यूसर और एक्टर देव साहब जी है, और जो गाना लिखा उन्हीं ने डायरेक्ट किया है। छोटे भाई विजय आनंद, गोल्डी आनंद इनको भी बुलाया जाता है। और कमाल की बात ये भी है कि इन्होंने ये फिल्म में भी काम किया है विजय आनंद जी, और एक बहुत ही खूबसूरत गीत, मेरा एक पसंदीदा गीत उन्होंने ये फिल्म में गाए हैं, वो भी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी का नगमा है। लेकिन उसे हम चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम प्रोग्राम उनके बड़े भाई देवानंद साहब जी का सजा रहे हैं। तो हमने वो नगमा जो विजयानंद और बिंदु पर पिक्चराइज किया गया है ये फिल्म का, जो मैं होता एक तूता हुआ तारा तेरी रातों का तो क्या होता, उसे चुना नहीं क्योंकि उन पर नहीं पिक्चराइज किया गया है। देवानंद साहब जी, हेमा मालिनी, विजय आनंद, अजीत प्रेम चोपड़ा, बिंदु, एके हंगल, प्रेमनाथ का एक फिल्म। चहरेंगे चहरेंगे चहरेंगे साथ साथ पहुंचेंगे 1980 फिल्म का नाम लूट मार। ये एक फरमाइश वाला सॉन्ग है। पिछले हफ्ते हमने काफी फरमाइश वाला सॉन्ग सुनाया आपको, और ना जाने कैसी ये, और मैं देखता हूं एक दो और, उन्हें शायद हमने सेलेक्ट नहीं किए थे पिछले हफ्ते तो चलाया नहीं, लेकिन आज ये गीत हम चलाएंगे। ये गीत अमित खन्ना जी का लिखा हुआ, जो किशोर कुमार गाएंगे, और वो भी राजेश रोशन के साज और संगीत पर। कि हस्तु हरदम खुशियां हो या गम, पेश करता हूं।

0: हस्तू हरदम खुशियां हो या गम, किसी से तू डरना नहीं और डर डर के तू जीना नहीं। किशोर कुमार की आवाज और साथ भी दे रहे थे वर्षा भोंसले और शिवांगी कोल्हापुर जो शक्ति कपूर की वीवी है। अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत ये था मेरे प्यारे सुनने वालों। संगीतकार राजेश रोशन। 1980 नेहतीन तख तख का फिल्म लूट मार से हमने नगमा को निकाले और देखो ना वही बात, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी टीना मुनीम के साथ इन्होंने ये मूवी में काम किया है लूटमार। अमजद खान भी है, महमूद साहब जी, प्रेम चोपड़ा, निरूपा रॉय, सिंपल कपाड़िया, ओम शिव पुरी, कल्पना आयर, शरद सक्सेना, कादर खान। इस घंटे को छोड़े जाते हैं मेरे प्यारे सुनो, एक गीत सुनाऊंगा ब्रेक से पहले और ब्रेक तमाम सूचनाओं के बाद, क्योंकि इश्तिहारे के बाद भी मृत्यु समाचार भी अफसोस के साथ भी पुकारा जाएगा। जस्ट दैन मैंने कर सो रोंट 12 ओवर 7। तो ये मूवी जो है, ये मूवी से एक और गीत हम आप तक पेश करेंगे। फिलहाल तो किशोर कुमार को पेश करता हूँ और बाकी इन्फॉर्मेशन ये फिल्म का, ये गीत का ब्रेक के उस पार।
1: जरा हंस के, जरा और

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता बीफे को 80 साल की आयु में तख्त यार औत श्रीमान पारस मुरली और बाकी चार बहनों और दो स्वर्गीय भाइयों और चार स्वर्गीय बहनों की बहन, दो भौजी के ननद और सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सवित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हफ्ता बीफे को 80 साल की आयु में तख्त यार औत श्रीमान पारस मुरली और बाकी दो स्वर्गीय भाइयों, चार बहनों और चार स्वर्गीय बहनों की बहन, दो भौजी के ननद, सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सवित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 2 बजे मोरखन में दख्तवी उर किए जाएंगे। ओकनबर्ग क्रीमाटोरियम ओकनबर्ग स्ट्रैट 21 देनहाग में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फरजोरखिंग समस्त परिवार मुरली के दुख में शामिल है।

अन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए और चाहे मेरी जान जाए। बहुत ही खूबसूरत पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये प्यार भरा नगमा एक लग छेड़छाड़ सॉन्ग में गिना जाता है अगर आप इसे ठीक रूप से सुने। और मूवी में नटुलक फिल्म को भी आपको देखना है। किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गाए हैं। राहुल बर्मन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम हीरा पन्ना। और इससे पहले यानी कि ब्रेक से पहले एक गीत सुनाए थे कि मैं तस्वीर उतारता हूं, किशोर कुमार की आवाज में, वो भी हीरा पन्ना का एक नगमा। और हीरा पन्ना मेरे प्यारे से नॉलेज नहीं है 1974, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी। वो ये फिल्म हीरा पन्ना और सीना तमान के साथ राखी गुलजार भी है, रहमान साहब जी, धीरज कुमार, जीवन। मेरे प्यारे से नॉलेज 7:19 गुजर चुके हैं, साथ ही नई घंटी मोए और आप चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे। कस के बारिश हो रहे हैं बाहर स्टूडियो के, और यहां अंदर एकदम गर्म। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भी जहां पर हैं सेफ हैं, कहीं आप बैठे हुए हैं जहां भीग नहीं रहे हैं तो आप एंजॉय कर रहे हैं। बैक टू द फ्यूचर है ये लाइव एंड डायरेक्ट यू हर के स्टूडियो रतनाम से, और आज पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम ऑफ कोर्स देवानंद साहब जी का, लगातार उनके नगमाएं उनकी मूवी से निकाल रहा हूँ जो इन पर पिक्चराइज किया गया है और सेवा में पेश कर रहा हूँ। मोरखन आवंत मेरे प्यारे से नॉलो, कल रात्रि को जो 4 जून है और इस महीने का पहला दोनदा बृहस्पतिवार, आपका सेवा हम करने चले आएंगे, और वो भी 8 से, रात्रि में 8 से 11 तक। हाँ जी, 3 लगातार पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। और दिल की आवाज में मेरे प्यारे से नॉलो, आप सभी ने सुने होंगे कि सुमन कल्याणपुर जी भी हमारे बीच नहीं रहा, बहुत अफसोस के साथ वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, वहां जहां वापसी नामुमकिन है। तो कल के प्रोग्राम में उनके कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स, क्योंकि दिल की आवाज में रोमांटिक सॉन्ग्स हुआ करते हैं ज्यादा, लेकिन उसका कुछ दर्द भरे नगमाएं भी हम लेकर आएंगे उनकी याद में। हमारे वो प्रोग्राम दिल की आवाज में कल हम शामिल करेंगे। और गाने लाजवाब बेमिस

स्टूडियो रतनाम से और उस पार आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि प्रोग्राम हम मिलकर बनाएंगे। आप इत्मीनान से सुनेंगे, ऐप करेंगे और मैं यहां से बहुत ही प्यार के साथ सबसे प्यारे जो ढूंढ होंगे पेश करेंगे और सबसे जो डर भरे हैं आपको सुनाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे सुनोलो, वो प्रोग्राम बना रहा हूं उन लोगों के लिए भी जो डर भरे गीत को पसंद करते हैं। और हाँ, वो कह रहे हैं कि दर्द भरे नगमाएं हमेशा वो प्रोग्राम में बहुत कम हुआ करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार भरा, तो हम प्यार बरसाना चाहते हैं उस प्रोग्राम के साथ। लेकिन हम आपको भी नहीं भूलेंगे, हमेशा हमारे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे दर्द भरे गीत और आपका दिल हम जरूर से जरूर बहलाएंगे। और क्या जाने एक दिन मैं एक प्रोग्राम ऐसा सजाऊं जिसमें सिर्फ डर भरे नगमाएं होंगे। यू नेवर नोस। मेरे प्यारे सुनो, 8 मिनट बाकी हैं सरे 7 बजने में और ले चलता हूं अगले मूवी की ओर। हमें वापस जाना पड़ेगा और हम द 60s में जा रहे हैं। 1967 फिल्म का नाम मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ एक पॉपुलर सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन के साथ और संगीत पर किशोर कुमार और लता जी जो मिलकर गाएंगे कि आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां।

आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। मुंह है कितनी खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों। मन में मेरे दिल का जो तार है वो बज गया, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग करने लगा इस गीत सुनते वक्त, जैसे फिट्स बेल। तू जाने तो लता जी और किशोर कुमार क्या आवाजें हैं, लेजेंड्स है। मजरू सुल्तानपुर जी लाजवाब बेमिसाल, वो व्हाट अ सॉन्ग। और एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन जी की म्यूजिक, सो हरकेन बाट जेवल टीफ, फिल्म का नाम है 1967 मेरे प्यारे से नॉलो 1967। एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही देव साहब जी देवानंद, डायरेक्टर छोटे भाई विजय आनंद। ये फिल्म में इन्होंने द ग्रेट अशोक कुमार जी के साथ काम किए हैं, हेलन भी है, विजयंती माला, सचिन पिलगांवकर, अंजू महेंद्रू, हेलन फड़ियल, मनमोहन, नाजीर हुसैन, सापरू साहेब जी, प्रतिमा देवी, जगदीश राज, और कौन है और कौन है, आनंद कुमार या मोयूर हिल मोयूर। कुछ लोगों ने ये कश उठाए हैं आज ये बारिश के मौसम में ऐप करने के लिए, अरे बाप रे, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे पारस मामा जी और खैरदा जी सुन रहे हैं प्रोग्राम हिलफुल स्टेरक, तो ओक पारस मामा जी तोह पटांग की आप चून किए हुए और प्रोग्राम सुन रहे हैं, उजाला रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। हिरेंद्र जी और चित्रा जी अटमार सब्रुक दंक्यूलीवेल, सुशीला चंद्रिका सिंह जी आम सल्फीन का दनाह का मिक दंक्यूवेल मिक, आमस्टरडाम का सत्या जी या सत्या जी सोम्स बेनिक रुपसाहत रखनीत। और अभी मैं देखता हूं आने वाले शनिवार को हम अवश्य रहेंगे, मदारना बेनिक रोक तो ही कुब्रसाहत रखनीत, मजबूरियां हैं इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। अब साथ रखावन, ये समझ लो कि मजबूरियां कुछ ऐसे हैं जिसे हम टाल नहीं सकते। दान को मेकनी थी तू जाने तो। और आमस्टरडाम सेंट्रम से प्रभा जी का एप भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिरवाल्डो को घर छोड़कर स्वाख स्वाख में हिरवाल्डो को छोड़कर एंजॉय करने चला है, और क्यों ना चले, यहाँ का मौसम तो बदल गया है, बारिश हो रहे हैं। तो मारखरी जी अपने सहेलियों के साथ मालती बेया और फेमिया एस्तपोना स्पाया की ओर चल गए हैं, जहाँ से मजा ले रहे हैं और चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। तो डायमंड्स फेन द चुली ऑफ खस्तम से एंजॉय एंजॉय भरपूर। एंड देंको कमी चान हिरवाल्डो मन मावार सहेल के सिनेमे खान, क्योंकि वो बाल था कि आज रात के बाल है नीदरलैंड उफन वेस्टराइट वेका जांस पहले मांगे खेले एक उफन वेस्टराइट में नखेरिया ऑफ इस टूनेशिया, एक वेट था लमान एक वेट इतनी भैया। लेकिन एंजॉय करें आप सब मेरे प्यारे सुनने वालों, और ऐप करने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो दो वीक्स है और या वीकेंड के तो कुछ ना कुछ गर्मा गर्म तू जाने तो वाइन विस्की बीरी कुछ ना कुछ पिया जा रहा है। लेकिन इस मौसम का हाल मैं देखूं तो लोग सोचते होंगे कि बाहर इतना ठंडा है, लाओ कुछ और कोई कोई कहते हैं कि जब मैं नहीं पीता तो मैं एकदम चुप सा रहता हूं, लेकिन एक दो प्याले अगर मैं लगा लूं तो हमारे अंदर के जो शेर है वो जाग उठा है। ऐसे ही एक गीत मेरे प्यारे सुनने वालों हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गीत का बोल है कि मेरे प्याले में तू मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तमाशा, एक नगमा जो किशोर कुमार और दादा मन्ना डे जी मिलकर गाएंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है,
संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 1974 का फिल्म मेरे प्यारे सुनो, अमीर गरीब से ये नगमा को निकाल रहे हैं, पेश करता हूं।

0: तो फिर देख तमाशा।
1: मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तू तमाशा। दादा मन्ना डे जी और किशोर कुमार की आवाजें और मिलकर ये दोनों ने बहुत सारे हसीन गाने गाए हैं, मस्ती भरी गीत भी गाए हैं और सभी हिट सॉन्ग्स हैं। ये गाना भी काफी पॉपुलर था उन दिनों। आनंद बख्शी जी ने लिखा और मिलकर दोनों ने गाए हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। अमीर गरीब फिल्म का नाम, 1974 का फिल्म और ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन कुमार, देव साहब जी का एक फिल्म हेमा मालिनी के साथ, प्रेम नाथ, तनुजा, सुचित कुमार, जूनियर महमूद, सुलक्षणा, राज मेहरा, मोहन छोटी। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनेवालो, लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। देवानंद साहब जी इनके मूवीज से इन पर पिक्चराइज किया गया नगमाएं जो है निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूं। एंड इट इज सेफ मिनट ओवर द क्लॉक फन हल्फा। सरे 7:07 गुजर चुके हैं, एकदम वापस ले चलेंगे 8 साल 1966। फिल्म का नाम प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से गीत निकालेंगे मेरे प्यारे सिनेवालो। और गीत जो हम निकालेंगे रफी साहब जी की आवाज में गीत पेश होंगे कि मुझको मिल गई मोहब्बत, मुझको मिल गई मोहब्बत। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत, संगीतकार शंकर और जय किशन, पेश करता हूं।

गई मिल गई मुझको मोहब्बत मिल गई। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुन वालों, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने गाए हैं, शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर। प्यार मोहब्बत फिल्म का नाम, प्यार मोहब्बत 1966 का फिल्म है। शंकर मुखर्जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी और सहरा बानो का एक फिल्म जिसमें प्रेमनाथ भी है, शशिकला, देवी साहब जी, दुर्गा खोते, मुराद साहब जी, असीत सेन। अभी एक डबल आपको हम सुनाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, एक डबल आपको हम सुनाने वाले हैं, लेकिन उस डबल से पहले, यानी कि एक फिल्म से दो नगमाएं, एक डट भरे गीत की ओर जो पॉपुलर है मेरे प्यारे सुनने वालों और जो किशोर कुमार जी ने गाए हैं। देवानंद साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है जिसका संगीतकार है राहुल बर्मन, आर डी बर्मन। और जानता है किसने ये गीत लिखा? हमारे प्रिय सहेल लुधियानवी जी, कमाल का गीत इन्होंने लिखा है। फिल्म का नाम जोशीला मेरे प्यारे सिने वालों, और ये फिल्म जो है 1973 का है। निहत इंद्रियन सेफ, मतलब किशोर कुमार को आप सुनेंगे कि किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐसो दीवाने।

किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, किशोर कुमार की आवाज, हमारे प्रिय सहेल लुधियानवी जी, इनका लिखा हुआ गीत किशोर कुमार ने गाए हैं। आर जी बर्मन, राहुल बर्मन की साझा और संगीत पर डट भरे गीत निकाले हैं 1973 ने इंद्रियन से का फिल्म जोशीला। जोशीला से निकाले हैं फिल्म का डायरेक्टर यश चोपड़ा जी, देवानंद साहब जी, हेमा मालिनी, राखी, पद्मा खन्ना, रुपेश कुमार, प्राण साहब जी, बिंदु, इन सभी का एक फिल्म है। वादा के मुताबिक मेरे प्यारे सुनने वालों, एक फिल्म का डबल पेश करेंगे। फिल्म का नाम है तीन देवियां, और तीन देवियां मेरे प्यारे सुनने वालों 1965 का फिल्म है, निहतीन फैफन सस्ता। खूबसूरत नगमाएं दो मजरू सुल्तानपुरी जी, इनका लिखा हुआ निकालूंगा ये मूवी से, और जिसका संगीतकार है एस देव बर्मन, सचिन देव बर्मन। पहला गीत जो आपको सुनाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, उफ कितनी ठंडी है, और उसके बाद में ऐसे तो ना देखो कि हमको, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए। दो नगमाएं खूबसूरत मेरे प्यारे सुनने वालों सेवा में जो हम पेश करने जा रहे हैं, फ्रॉम द मूवी तीन देवियां निहतीन फैफन सस्ता, अमरजीत फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर देव साहब जी ने मूवी में काम किया है, और वो भी सिमी गढ़वल, नंदा, कल्पना, सुलक्षणा, आयुष जौहर, यिंकी दास, हरिनाथ, और मैं देखता हूं और कौन, रशीद खान भी है। ये दो नगमाओं के बाद मेरे प्यारे सुनने वाला आप सुनेंगे 8 बजे की इश्तिहार, और इश्तिहारों के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे। और मैं देखता हूं व्हाट्सएप पर मेरे प्यारे सुनने वालों, रोहनी कल्लू रोटरडम रोहनी कल्लू जी ने भी ऐप किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्स्टरडम से भैया सुनील का ऐप भी आए हैं, तो थैंक यू वेल, एंजॉय यू आर, और एंजॉय द सॉन्ग्स पेश करता हूँ।

रहे मेरा दिल और तू ही मेरी मंजिल। किशोर कुमार और लता जी का ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार सचिन देव बर्मन। फिल्म गायत से हमने नगमा को निकाले। गायत 1965 का मूवी है, 1965। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कितनी प्यार। देवानंद साहब जी प्रोड्यूसर और एक्टर, ये फिल्म का डायरेक्टर इनके छोटे भाई विजय आनंद वहीदा रहमान के साथ इन्होंने फिल्म गायत में काम किया है और किशोर साहू भी है, अनवर हुसैन, लीला चिटनिस और बहुत सारे लोग। बहुत खूबसूरत मूवी है ये मेरे प्यारे सिनेमा वालों, फिल्म गायत, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी। और सभी गाने लाजवाब बेमिसाल है। 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनेमा वालों, 8 बजकर लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडाम से आज इस पहली बुधवार के रात्रि को 3 जून को पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और हम आखिरी घंटे में आन पड़े हैं क्योंकि रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। ममोर खनाफन कल रात्रि को, जो इस महीने नए महीने जून का पहला डोंडरडा है, पहला बृहस्पतिवार है, सेवा करने चले आएंगे मोरखनाफंत रात्रि में 8 बजे से 11 बजे, 3 घंटे लगातार विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स और डर भरे गीत लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट की बार के बहुत ही खूबसूरत जो स्टूडियो है रोटरडाम शहर से। और कल वादा के मुताबिक जो हमें छोड़कर बहुत ही दूर चला गया और जिनकी खूबसूरत यादें संगीत के रूप में छोड़कर चले गए हैं, सुमन कल्याणपुर जी के कुछ खास रोमांटिक सॉन्ग्स और डर भरे नगमाएं कल के प्रोग्राम दिल की आवाज़ में हम शामिल भी करेंगे उनकी याद में, और जिसके साथ यकीनन आप सभी भी आनंद लेंगे, मनोरंजन प्राप्त करेंगे और यकीनन आप एंजॉय करेंगे। Morgen avond, 8 uur tot 11 uur in de avond, hier op UR Live, vanuit Studio Rotterdam, Dilki Awas. Le chalta hoon agle movie ki or, mere pyare suno walo, agle movie ka naam hai, Jab Pyar Kisi Se Hota Hai. Aur, ek geet, jo milkar gaayenge, Rafi Sahib ji aur Lata ji, Hasra Jaipuri ji ka likha hua, Shankar Jai Kisan ki saaj aur sangeet par, कि ये आंखें उफ युमा, जब प्यार किसी से होता है, 1961 का मूवी है, नहीं हती नहीं नंसेस्सा।

0: ये आंखें उफ यू मां और ये सूरत उफ यू मां, प्यार क्यों ना होगा कोई दिल को ठामे उफ यू मां। लता जी और रवि साहब जी की आवाजें, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गाए हैं शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर 1961 नीहति नैनन सेस्तक का फिल्म जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये फिल्म का नाजिर हुसैन, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद आशा पारेख, प्राण साहब जी, सुलक्षणा राजेंद्र नाथ, राज मेहरा, इन सभी का फिल्म है। एक बूट बनाऊंगा और तेरा पूजा करूंगा। इखान बिल्ट फॉर योर मार्क मूर्ति और उसको हम पूजा करेंगे। रफी साहब जी की आवाज में गीत आप सुनेंगे, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, शंकर और जयकिशन संगीतकार। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम असली नकली और ये फिल्म जो है 1963 का है, नहीं द्रियन सेस्तक। और मैं देखता हूं ऐप पर है लिसका सारदा, डंकीवाल सारदा जी आपके ऐप के लिए, सेंट मार्ट का पूनम जी, पूनम डंकीवाल फॉर अफस्टम, और सूरीनाम हमारे प्रिय सूरीनाम देश का अनिता डंकीवाल ओक फॉर अफस्टम। बेहद खुशी है हम कि आप तीनों ने चून किए हुए हैं, बस आप मजा लें नगमाओं के साथ और खास करके उजाला रेडियो के साथ और उससे भी खास करके प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर जो देवानंद साहब जी का हम सजा रहे हैं हियर ऑन यू आर।
1: एक बुत

और तेरा मैं पूजा करूंगा। रफी साहब जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, हजरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाया है शंकर और जय किशन के साज और संगीत पर। असली नकली फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1963 का है, निहतिन द्रियन सिस्टर। ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें देव साहब जी ने काम किया है साधना के साथ। मुकरी लीला चिटनिस, नाजिर हुसैन, अनवर हुसैन, केशव मुखर्जी। घर की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, साथ होने तबाह की है। सरे 8 बजने में या 7:04:09। बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं, और जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे सुनने वालों, कल रात्रि को 8 से 11 बजे हम पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज हियर ऑन यूआर। और आने वाले शनिवार 7-6 जून को हम पेश करने वाले हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर द लोकल सॉन्ग्स। बीच में हम नहीं रहेंगे, नंबर निकट 13 जून एंड 27 जो आखिरी है इस महीने का शनिवार, तो हम फिर हाजिर रहेंगे ऑफ द सैटरडे आवंट। लेकिन जो प्रोग्राम है अब वोंसडे एंड डोंडरडे फॉरऑल्सनोग बेने कावेस। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, एक दर्द भर गीत, एक विदाई वाला सॉन्ग मैं पेश करने जा रहा हूँ। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज। एक गीत जो एक फरमाइश गीत है, एखलक बहुत कम आजकल ये फरमाइश किया जाता है, मालूम नहीं क्यों, क्योंकि इस गीत के जरिए बहुत सारे दिल की बातें कहा जाता है। समझना चाहिए, बस समझ समझ की बात है, आजकल इस तरह के नगमाएं नहीं बनता। मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, संगीतकार एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन, बंबई का बाबू फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1907 का है। मुकेश जी को पेश करता हूं।

0: Hey. Oh yeah. चल रही सजनी अब क्या सोचे कजरा ना बह जाए रोते रोते। मुकेश जी की आवाज मेरे प्यारे से ऑल ओवर हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी की आवाज मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये विदाई सॉन्ग इन्होंने गाकर सुनाए सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर 1907 निहतिन से सखा फिल्म बंबई का बाबू से हमने नगमा को निकाले। और ये बंबई का बाबू प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज खोसला जी देवानंद साहब जी और सुचित्रा सेन का एक फिल्म जिसमें नाजीर हुसैन भी है जीवन धूमल आंशला सखदेव जगदीश राज और रशीद खान। मेरी प्यारी सुनो ले चलता हूं आपको अगले गीत की ओर। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग आपको सुनाने जा रहा हूं। एक पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो हलो जो वहीदा रहमान और देव साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है 1962 का फिल्म। फिल्म का नाम है बात एक रात की। बात एक रात की निहतिन त्वेन से मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत जिसका संगीतकार दादा हेमंत कुमार और गाने वाले भी है दादा हेमंत कुमार जी विथ स्वर्गीय अफसोस के साथ कहना पड़ता है स्वर्गीय सुमन कल्याणपुर जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में।
1: मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया

ना तुम हमें जानो और ना तुम्हें हम जाने, मगर लगता है ऐसा कि मेरा हमदम जो है मुझे मिल गया। टाटा हेमंत कुमार जी और सुमन कल्याणपुर, इन दोनों की खूबसूरत आवाजें और वो भी हेमंत कुमार के साज और संगीत पर मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए 1962 निहदीन त्वेय से सक्का फिल्म बात एक रात की। शंकर मुखर्जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें देव साहब जी ने काम किया है वाहिदा रहमान जी के साथ, चंद्रशेखर, जॉनी वॉकर, आसिद सेन, जगजीत सेठी, इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। घड़ी के अनुसार मेरे प्यारे से 5 मिनट गुजर चुके हैं सरे 8 बजकर। हमारे प्रिय सहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक रूठना मनाना सॉन्ग कि भैया अभी ना जाऊं छोड़कर, कि हमारे दिल जो है अभी भरा नहीं। ऐसा होता है ना, अगर एक दूजे से प्यार कर रहे हो तो यही आप चाहते हैं कि 24 घंटे उसके पास आप रहें, लेकिन बहुत सारे प्यार चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे हो रहे हैं और जवान भी सब रहे, माए बाप घर पर तो जाना ही पड़ता है वक्त पर।

0: 1969 का फिल्म है, 1981, हाँ जी 81 का फिल्म है। एक मुतालीनी स्पीकर वार है पिकम क्लार्क ओ हियर या कुमती।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

अभी न जाऊं छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। रफी साहब जी और नाइटिंगेलाशा जी की खूबसूरत आवाजें, हमारे प्रिय सहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं जयदेव की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम हम दोनों मेरे प्यारे सुनो वालों, और 1961 का फिल्म है निहतिन इन अंसेस्टर, जिसका डायरेक्टर अमरजीत देव साहब जी और नंदा का एक फिल्म जिसमें साधना भी, ललिता पवार, जागीरदार रशीद खान, लीला चिटनिस, जगदीश राज, मेरे प्यारे सुनो वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग भी रानी वाला।

0: ऊंचे सुर में गाए जा एक मस्ती भरी गीत है। ये भी हमारे प्रिय सहेल लुधियानवी जी ने लिखे हैं और एसडी बर्मन सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर गाने वाले हैं हसीनों के पुजारी किशोर कुमार। ये बहुत पुराना मूवी है, 1955 का फिल्म है, 1955 तक। फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44। पेश करता हूँ ये पुराना नगमा हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में।
1: अरे कैसी बंसिया बजाई श्यामा सुध बिसराई तररे तररे तररे ररे
2: भूल गया यार
1: तररे तररे तररे ररे ऊंचे सुर में गाए जा मस्ती में लहराए जा दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

दुनिया की गाड़ियां, हाँ दुनिया की गाड़ियां चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है।

0: दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर, क्यों भाई मैंने ठीक कहा।
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा,
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना

0: करना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ दुनिया के फेर में पड़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे

0: या मस्ती भरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में तू गाए जा। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, हमारे प्रिय सहेलू जानवी जी का लिखा हुआ ये मस्ती भरी गीत किशोर कुमार जी ने गाए हैं, एस देव बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर। हाउस नंबर 44 फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1955 का है। 1955 प्रोड्यूसर और एक्टर देवानंद साहब जी, फिल्म का डायरेक्टर एम के बर्मन, कल्पना कार्तिक जो देवानंद साहब जी का स्पाउस है, ना स्पाउस नहीं उनकी बीवी है, केन सिंह भगवान दादा, कुमकुम रशीद खान, इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। आइलिन जी आउट हार्लेम, डंकी वाला आइलिन जी आपके ऐप के लिए लेकर भी सफेद क्लेम के अंदर यारी, आपके जो क्लेम के अंदर है यारी, ऐसे सुम्स हिलफुल टाइट एंड एनर्जी फंड ओपास एंड ओमास। लेकिन क्या करें, यकीनन आप बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं। हमारे जो है बच्चे और बच्चे के जो बच्चे हैं तो वो तो हमारे क्या कहते हैं, वो ही तो हमारे रैकदम है ना, हमारे धन हमारे दौलत तो बस वो ही सब है। तो भरपूर आप एंजॉय करें, खेन सॉरी से लेकर खनीत फन बैक टू द फ्यूचर, जो मैं देख रहा हूँ शायद दो और नगमाएं पेश कर पाऊंगा और यहाँ से रुखसत होंगे। एक गीत मस्ती भरे और बहुत खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलेंगे, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, दादा हेमंत कुमार जी और गीता दत्त जी मिलकर गीत गाएंगे, एस देव बर्मन सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम मुनीम जी, और ये फिल्म जो है भी 1955 का है। नेक दिन फैफन फैफ्ट, दिल की उमंगे है जवान,
1: दिल की उमंगे है जवान, रंग में
0: ये हाथों प्राण हो रहा साम में हेमंत कुमार।

0: फिर गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

ये है जवां और रंग में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया हार के ये दोनों जहां। दादा हेमंत कुमार जी और गीता दत्त जी की आवाजें और साथ भी दे रहे थे प्राण साहब जी, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत, ये मस्ती भरी गीत, प्यार भरा गीत आप तक हमने पेश किया है। सचिन देव बर्मन संगीतकार। और मेरे प्यारे सुनो, बहुत खूबसूरत मूवी है ये मुनीम जी, इतनी तीन फाइव एंड फाइव तक गाने लाजवाब बेमिसाल है सभी। और ऐसे बात है कि प्राण साहब जी प्रेम करता है लड़की से, लेकिन वो ना नाच पा रहे हैं ना गा पा रहे हैं, और देव साहब जी तो लाजवाब बेमिसाल हीरो है, वो गा सकते हैं नाच सकते हैं, और लड़की इनकर नाच और गान पर इंप्रेस हो गया और प्राण अपनी कोशिश में नाकाम, और वो दोनों हंस रहे हैं इसको। लेकिन अगर आप मूवी देखेंगे तो आप इस गीत पर प्राण साहब जी ने भरपूर अपना कोशिश की है, लेकिन या एट क्लब 12 है कोनी डांस है कोनी सिंगर या प्रख्तर तो। फिल्म का नाम मुनीम जी, मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल मूवी, सुबोध मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ, देवानंद साहब जी, प्राण साहब जी, नालिनी जयवंत, निरूपा रॉय का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत हम पेश करेंगे, इस आखिरी गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आखिरी गीत हमारे प्रिय भी सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ एक पॉपुलर डांट भरा गीत हम पेश करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम फंतोष, एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन संगीतकार, किशोर कुमार गीत गाने वाले हैं। फंतोष बड़े भैया देव साहब जी का, चेतन आनंद जी ने डायरेक्ट किया है, और देवानंद और लीला चिटनिस का एक फिल्म। इस गीत के बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे, मेरे प्यारे सुनोला, आज जुदा हो रहे हैं, कल मिलने के लिए, जुदा नहीं होंगे तो फिर मिलेंगे कैसे। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेल। और रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल, बाय।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

0: उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं जो कि उजाला का सोना चिड़िया है और उजाला के सोना चिड़िया एक 20 साल गाना हैगा दिट वर्ड एट द जोमर हिट फ्रॉम 2026 या सिर्फ उजाला के जरिए आप सुनने को जा रहे हैं नतीजा खाए दत ओवरऑल नहीं हो रहा मार उजाला ई गनवा आज हलचल मचा दी है ई गनवा के साथ तो सुनिए गाना अत इज अ नंबर
1: जीने
0: जो हर एक को पसंद आएगा
1: तू ही वजह
0: मोय से सुन ध्यान से सुन कान लगा के सुन

I love this song. सजना है मुझे सजना के लिए. वाह. या दिल खेफ ये तो हल लीव है. लीव है, लीव है, लीव है. और हम इंतजार कर रहे हैं उस शख्स का जो हमें आलतैत इंतजार करवा रहे हैं. है लात में आलतैत वक्त नितलो के. दुस या गुड. हाय इज द टोरी मान ook. दुस या dan mag je dat wel zijn hoor. Dus ik wacht wel op hem. Een deze dagen hebben we kon ik gaan wat part huis. Of toen dacht ik van ai, werkelijk. Als ik 's morgens wakker word, ik neem een kopje koffie of een kopje chai en ik doe de deur open of de gordijnen open en ik kijk naar buiten, naar de tuin. Dan draai je deze poko op de achtergrond. Ja, is toch geweldig? The Magic Morning.

कांटा लगा उजाला के साथ। हाय सर, और हाय सर, सच धज के इन सोमर क्लीनिंग नया वकांसी पे गला दमिया हमें एक फोटो बैठा रहा असौ फाय अन फिल्म आनंद मार के बस एंड दे देट में देंक आन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इन सोन हूं नमी सोन बस जो नहीं डबल डेकर तो देखी जवान कूद के बैठा है या ऑफ ठड़ा है देख में देंक आन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।